0: मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
0: मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों परगट जाए
1: मन्ने मग न चले पंथ मने धर्म से ती संबंध
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: मन्ने पावे मोख द्वार मन्ने परवारे सदार
0: मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक भवे ना भिख
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
0: पांच परवान पांच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान
1: पंचे सोहे दरा जान पंचा का गुर एक ध्यान
0: जेको कहे करे विचार करते के करने नहीं सुमार
1: तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत
0: जेको बुझे होवे सचियार तबले ऊपर के ता पार
1: ताती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर
0: जी जात रंगा के नाम सबना लिखया बुढ़ी कलाम
1: यो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए
0: किता तान सवाले रूप केती दात जाने कौन कूत
1: किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ
0: कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जामा एक बार
1: ज्योत पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
0: असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
1: असंख सूर मोह पक

0: जाने सोई।
1: किब कर आखा कैब सलाही, क्यों वरनी किब जाना।
0: नानक आखण सबको आखे, इक दो इक सियाना।
1: बड़ा साहब बड़े नाए, कीता जा का होवे।
0: नानक जे को आपो जाने, अगे ज्ञान सो है।
1: पताला पताला लख आगास आगास,
0: ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहने क बात।
1: 618 कहन कतेबा असलु एक तात,
0: लेखा होए त लिखिए, लेखे होए बनास।
1: नाक बड़ा आखिए, आपे जाने आप।
0: साला ही सला, एती सुरत ना पाईया।
1: नदियां अते वाह, पवे समंद ना जानिए।
0: समंद सा सुल्तान, गहरा सेती माल तन।
1: कीड़ी तुल ना होवनी, जेत समन ना विसर।
0: अंत ना सिती कह ना अंत, अंत ना करने दे ना अंत।
1: अंत ना सुन, अंत न वेखन सुन ना अंत, अंत न जापे का मन मंत।

0: अनुपूत अंग अपाया पंग कथमित अपार गुण गणे उदार
1: मुन गण प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: अलिस कर्म दृश्य धर्म सर्वा पटांडे अंडट बाडे
1: चाचरी शांत व प्रसाद
0: गोबिंदी मुकंदी उदारी अपारी
1: हरियम करियम ने नामे अकामे पुचांग पर्यात छंद
0: चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दान चतुर चक्र जान
1: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र पाती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र धान
1: चाचरी छंद
0: न सत्रे न मित्रे न परम न पित्र
1: न कर्म न काये जन्म जाए
0: न चित्रे न मित्र परे है पवित्र
1: दिशे अदिशे अदृश्य अकृशे भगवती शांत व प्रसाद कथते
0: के आस जिसे के आप पीसे के आगज कर्मे के आप परम
1: के आप लोके के आदित सोके के अवधूत बने के बहुत करने
0: के राजन प्रवाह है के धर्म तो जा है के आसुक भरने के सर्वा अपरने
1: के जगतं कीर्ति है के शतरंग क्षत्री है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपम अनुपे
0: के आदि अदि वह के आप अपी वह के चतरंग बहीन के एक अधीन
1: के रोजी रिजाय के रहीम में रिहाय के की पाक वैव है के गैबल गैब है
0: के फूल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रुजी दहंद है
1: के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य है के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौन
1: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीन है के

0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र मानिए सदैवं परदानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मानने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलामे के साहिब कला में।

0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रमुक्त प्रवाह है सजुक्त सुधा है
1: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त अपराध है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अगाध रूपे अनाध स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रिवर्ग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे
1: त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अशुद्ध है के नरकन पर नास है पृथ्वल प्रवास है
0: निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है।

0: से अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विपुते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते
0: अनंगी अनामेत पंगी त्रिकामेंद्र पंगी

0: अमित अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है
1: पार्वती शांत है प्रसाद
0: जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है
1: साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रुजीद हंद है के राज कर हिंद है करमील करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है
1: गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल पिकान है
0: कलकं प्रनास है समस्त निवास है गाजल गनीम है रजायक रहीम है
1: के साहेब के राह है के नरकन प्रनास है वस्तल निवास है
0: के सरबुल गवान है हमेशल रवान है तमीमुल तमाज है तमामुल तमीज है समस्तल अजीब

0: के मितो सबात है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है
1: के मितो पिसा है के अतम प्रभा है के अचलंगा नंग है के मितो अपंग है
0: मधुपार शांत वै प्रसाद
1: मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर पर अकंज हर न प्रभंज
0: मन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड
1: अनुपव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम।

0: पार है, सर्वंकर है, सर्वस्य है, सर्वनाश्य है,
1: करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है, करुणाकर है,
1: अजपा जप है, थपा थप है, कृता कृत है, अमृता मृत है,
0: अमृता मृत है, करुणाकृत है, कृता कृत है, तरणी त्रित है,
1: अमृतेश्वर है, परमेश्वर

0: तंग सुरंग सुवारे
1: मोट रंग करंग से कूदत पान के गौन को जात निवारे
0: भारी पुजान के भूप पलीप दन्यावत शीश न जात बिचारे
1: एते पै तू कहां पै भूप अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश।

0: दानव देव फनिंदन साचर कूत पवेख पवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।
0: उन पर तापन बार जेत तुन पापन के बापुंज कपेंगे।
1: साज समूह पर सान्य फिरे जग सतर समे अवलोक चपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजून त्रिलोक राज करेंगे।
1: कोटि शनानिक जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास।

0: हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो, देवदयां तो जशन पजायो।
0: आदंते के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।
1: नमस्कार तुसी को हमारी।

0: मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया
0: जीव जंत सब तुद पाए एक वेक परसन आया
1: लभ लो ओंकार चुका सतगुरु पला पाया
0: कही नानक जसन आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया
1: भगता की चाल नराली चाला नराली भगता केरी बिखा मार्ग चलना लभ

0: परदाता सो क्यों मनो वसारी है।
1: जैसी अग्न उधर में तैसी बाहर माया,
0: माया अग्न सब एक जे ही करते खेल रचाया।
1: जात सपाना ता जम्मे आ परवार भला पाया,
0: ये शुकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ही माया जित हर विसरे मैं उपजे पाओ दूजा लाया,
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया।
1: अरे आप मुल्क है मुल ना पाया जाए,
0: मुल ना पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाए।

0: मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी
1: हर हर नित जप्यो जीहो लाहा खट्यो दिहाड़ी
0: एओ तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना
1: कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवन जारा
0: ए रसना तू आना।

0: कर्म कमाया तो दसरी राजा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया,
0: गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया।
1: कहे नानक एह शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया।
0: नेत्रो मेरियो हर तुम में जो तरी हर बिन अवर न

मेरे मन हर हर ध्याए सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुर पूरे मीठा लाया। मेरे मन हर हर ध्याए सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुर पूरे मीठा लाया। रहाओ आपे धरती साजन प्यारे, आपे धरती आप जल प्यारा, आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म।

जागरवास बैकार जो की सुनते हम जे तेलख नाम करतार सुख मूर्त नाम कह का कर सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा विकार एक हुंदा खै चले थाउ तिना बिकाई कार जल थल जिया पूरिया लुआ काराया कार ओए जे आखै सो तू है जाने तिना पितेरी सार नानक भगतां भुख

दै दिस रव रहिया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर है। जो तुमरा जस गावे करतै से जन कब हुना मरतै चूर है। तंद बंद बिन से माया कै साधु संगत मटै बसूर है। सुख संपत भोग इस जी कै बिन हर नानक जाने कूर है। टोडी महला पंजवा माही मेरे मन की प्यास एक खन रह न सको बिन प्रीतमा दर्शन देखन को तारी मन आस। रहाउ सिमरो नाम निरंजन करतै मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुख तातै अवनासी बिमल जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास। शांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुखदाता। अंतर जामी मन को पावन रहाउ सुंदर सुकड़ चतुर सभ्यता। इरदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी। कर्म भूमि जन सुखावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा आन बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शल त्रिण की अगन में की छाया। गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ सोड़ सियानप बहु चतराई। दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी। मानुक देका ए उत्तम फल भेद बख्यान करत साधु जन। पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक। हर सिमरन दहन पहे मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे। बड़े भाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर डीठे। रहाओ गुण गावत अचुत अवनासी काम क्रोध बिन से मत टीठै। अस्त्र पहे साच रंग रतै जन्म मरण बौहर नहीं पीठै। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठै। नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठै। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा। सहज आनंद होवै दिन राते अंकर पलो हमारा। रहाओ गुरपुरा पिट्यो बडभागी जांका अंत न पारा वारा। कर गए काढ़ लियो जन अपना बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी बहोड़ न संकट द्वारा। नानक शरण गई स्वामी के पुने पुने नमस्कारा। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै। हर सिमरत बिन से सब दुख रहाउ कोट जन्म कै किल विख नासै। सिमरत पावन तन मन सुख देख सुरूप पूर्ण पई आसा। दर्शन पेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टूडी महला पंजुबा हर हर चरण हृदय उतारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना। कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर। हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया। ठाकुर अगम अपारे सो जन जो जन पार ब्रह्म अपने कीनै। तिनका बहुर कशना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा। हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहयो कहा अपनी अदमाई। उर्जो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई। रहाओ जग झूठे को साच जान कै तासु रुच पजाई। दीन बंद सिमरियो नहीं कबहो होत जो संग सहाय। मगन रहो माया मैं निस दिन छुटे न मन की काए। कहे नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।
ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ ਕਾਏ ਰੇਬਕ ਬਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਓ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਨੈ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੇ ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ ਪਤ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ ਰਹਾਓ ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ ਇਕਾਦਸੀ ਪ੍ਰਤ ਕਹੇ ਇਕਾਦਸੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ ਭਨਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਕਿਰਤ ਸੁਮਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਬਿਕੁੰਠ ਗਏ

0: हर आपे पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपै हर आपे चगुर चुकावै वैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कूट कुटंतर के पाप सब खूवै हर पवजल पार उतार रहाउ काया नगर वस्त हर स्वामी हा निरपो निर्वै निरंकारा हर निकट वस्त कश नदर न आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहस राफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिसको कृपा करे सो हर नाम विहाजै सो साहा सच्चा बनजारा वैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर ध्याये सुखदाता चकंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा राखे उदर मझारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत छुड़ावन हारा जाके हृदय वसे जाके हृदय वस्या मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम अधारा बैराणी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित्याये जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आय रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा तित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं विसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए नानक सरन तुम्हारी हर जियो पावे तिमें छड़ाए राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कूट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सो ही मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहं गुर प्रसाद यक अर्ज गुप्तं पेस्तोग दरकोस कुन करतार हका कबीर करीब तू बेऐब पर्वत गार दुनिया मकाम में फानी तहकीक दिल दानी माम सार मुई इजराइल गिरफ्तार दिल हेच न दानी रहाओ जान पेसर पदर बिरादर कस नेस दस्तंगीर आखिर ब्याफतं कस ना दार दे चूं शब्द तकबीर सब रोज गसदम दर हवा कर देम बदी के आले गाहे न नेकी कार करदम मम ई चीनी अहवाल बद बखत हम चो बिखे बखील गाफिल बेन जर बेबाक नानक बुग्योद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद भाव तेरा भाग खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना पया तीत कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो सुमाए मैं दर मांगत भिखे पाए रहा केसर कुसुम मृग में हरणा सर्व शरीरी चरणा चंदन भगता जोत अनेही सर्वे परमल करना के पट पांडा कहे न कोय ऐसा भक्त वर्ण मैं होए तेरे नाम रह निवे रह लिवलाए नानक तिंदर भिखिया पाए तिलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए मेरे कंदन भावै चोलड़ा प्यारे क्यो धन सहज जाए हां कुर्बाने जाओ मेहरबाना हां कुर्बाने जाओ हां कुर्बाने जाओ तना कै लैण जो तेरा नाव लैण जो तेरा नाव तिना कै हां सतगुरु बाने जाओ।

मनडीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास धूड़ तिना की जे मिल जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे है नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे तिलांग महला पहला यानड़िए मानड़ा काय करे अपने घर हर रंगो की ना माने है सहु नेड़े तन कमलिए है बाहर क्या टुंडे है पैकिया दे सलाहिनिया सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जस तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जातन कंतन पावे करण पलाव करे बोते रे सातन महल न पावे विन कर्मा कुछ पाए नाही जे बोते रातावे लाभ लोभ अहंकार की माती माया माय समाणी इन्नी बाती सो पाई नाही पई कामने आनी जाय पुछो सो हगनी वाहे किनी बाती सो पाई है जो कुछ करे सो पड़ा कर मानी है हिकमत हुकम चुकाई है।

नानी करम प्राप्त होए जिन जपया तिसको बलहार तिसके संग तरे संसार कहु नानक प्रभु लोचा पूर संत जना की बाँचो तूर जिन जपया तिसको बलहार तिसके संग तरे संसार कहु नानक प्रभु लोचा पूर संत जना की बाँचो तूर। वाहिगुरु जी का खालसा।

नमः सब सुखदाता राम है दूसर नाय न कोई कौ नानक सुन रे मनाते सिमरत गत हो जे सिमरत गत पाई है ते पदर तमीत कौ नानक सुन रे मना ओद करत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन चतुर सुजान जैते उपजियो नानका लीन ताए मैमान घट घट में हर जू बस संतन के उपकार कहो नानक ते भज मना पौण जो तरै पार सुख दुख जे परस नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उसत निंदिया नाय जय कंचन लो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताय ता जान।

जन्म जन्म परमत फिरियो मिटिन जम को त्रास कौ नानक हर भजमना निरपय पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहियो मिटिन मन को मान दुर्मत सु नानक फदियो राख लेहो भगवान। बाल जवानी हर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान। करणो तो सुना कियो परो लोभ कै फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत आंद।

नरचाहत कछ और की और पई चितवतर उठ गौर नानक फांसी गल परे जतन बहु सुख किए दुख को कियो न कोए कौ नानक सुन रे मन हर पावे सो जगत बिखारी फिरत है सबको दाता राम कौ नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम।

संघ सखा सवताज गए को नन बिहो सात कौ नानक विपतम टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद कौ नानक जगत में।

राग एक संग पंच बरंगन संग लप अठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करहि पंच रागणी संग विचारि प्रथम भैरवी बिलावली पुण्या की गावै बंगली पुण असले की पई बारी ए पैरो की पंचो नारी पंचम हरक दिशाक सुनावै बंगा लुंगद माधव गावै ललत बिलावल गावहि अपनी अपनी पात आशपुत्र भैरव कै गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौसका लापै संग रागणी पंचो तापै गौण करी हरदेव गंधारी गंधारी सीवति विचारी तनाश्री ए पंचो गाई माल राखो सख संगलाय मारु मस्तंग मेवार प्रबल चंड कौशक उबार खो खट्यो आनंद पावरंद खो खट्यो पावरंद गाय अष्ट माल को सख संगलाय हुन आयो हंडोले पंच नार संग अष्ट सुते उठै तान कलोले गायन तार मिलावे ते लंगे देव करी आए बसंती संदूर साई सरसे आहिरी लै पर जा संगलाई पंचो यार जा सूरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सो आए सरस बाणो आए बनोदा गावे सरस बसंत कुमोदा आशपुत्र मैं कह सवारी पुण्य आई दीपक की बारी कचली पट मंजरी टोडी कई अलाप काम दिया गुजरी संग दीपक के थाप कालुंका कुंतल्यो राम कमल कुसुम चंपक के नाम गौराव कण रख लियन अष्टपुत्र दीपक के जान सबमल श्री राघव गावे पांचो संग बरंगण लावे।

तीर्थ अमृत सरोवर गुरज्ञान भजन परंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप दरा गुरुदेव संगत प्रा मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पारम परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गौड़ी सुखमणि महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।

0: अखिन माये धरी,
1: अनेक पुण्य जन करत नहीं तरह,
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे,
1: मुख नाम जपो मन मेरे,
0: नानक पावो सुख मेरे,
1: सगल सृष्ट को राजा दुखिया,
0: हर का नाम जपत होए सुखिया,
1: ना क्रोरी बंधन पर,
0: हर का नाम जपत निस्तरे,
1: अनेक माया रंग तिक

0: जन के ओठ सतानी
1: हर अर्थाव्य अल न जानी
0: ओत पोद जन हर रस राते
1: सुन समाग नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त भक्त नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त भव करे
1: नानक जन संग केते करे
0: बार जात एहो हर को नाम
1: काम ते न हर हर गुण गाम
0: सबते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर दुख लथा
0: नाम की महिमा संत हृदय बसे
1: संत प्रताप दुर सब रसे
0: संत का संग वड भागी पाई।

0: सात तारु पर सुख बसे
1: सोत परात मीत बंता संग हसे
0: हे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पव कमला
0: हे प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगली सामग्री सम साथ बसा
0: दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना
1: त्याग अवसर रचना
0: ऐसे दोख मूड अंध व्या

0: प्रसातिर सगल छिद्र ठाके
1: मन शनि पर ठाकर प्रभु ठाके
0: हे प्रसाद तुझको ना पहुँचाए
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे
0: हे प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: हे प्रसाद भूखन पहरी जय
1: मन से सिमरत के वास कीजे
0: हे प्रसाद असब हस्त सवारी
1: मन से प्रभु को कबु ना बिसारी
0: हे प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख प्रभु प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंद बनाई
1: मूर्त वैसा तिसे त्याई
0: जो

0: साध के संग मुख उज्जल होत
1: साध संग मल सगली होत
0: साध के संग मिटा अभिमान
1: साध के संग पर से ज्ञान
0: साध के संग बुझे परम नेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बनने कौन परानी
1: नानक साध की सुबह ब्रह्म है समानी
0: साध के संग अगोचर मिला
1: साध के संग सदा पर भुले
0: साध के संग आभे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रे
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कथू तावे
1: साध संग अस्थिर मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग किस्यो नहीं बैर
1: साध के संग न बिगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने पर मानदा
0: साध के संग नाही हो ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बनियाई
0: साध के संग न कभू तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त गोचल है
1: साधु के संग अजस है
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधार
1: साध संग साधन मीत कटम निस्तारे
0: साधु के संग सो तन पाए
1: जिस तन ते सब को परसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग सो बस रेवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सब जलम
0: साध के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलूखत हरा
1: साध के संग नर पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सुहेला
1: साध संग विश्रत मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग न व्यर्था जावे
0: बार भ्रम साध रिद बसा
1: नानक उदरे साध संग रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मानते बिसरा
1: साध संग सरपन निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रमीठा
1: साधु के संग कटकट मीठा
0: साध संग पे

0: का दस बड़ भागी पाइया
1: राम ज्ञानी को बाबा जाइए
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: राम ज्ञानी आप परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की कीमत ना है
1: राम ज्ञानी के समान माए
0: राम ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: राम ज्ञानी को सदा देश
0: राम ज्ञानी का कथिया न जायद अक्षर
1: राम ज्ञानी सबका ठाकर
0: राम ज्ञानी की मत कौन बखान
1: राम ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: राम ज्ञानी का अंत न पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता

0: नेत्र
1: कर्ण
0: सुने काहू की निंदा
1: साते जाने आपको मंदा
0: गुर पर साध भिक्षा पर हर
1: मन की वासना मनते डरे
0: इंद्री जित पंच दोह तेरा
1: नानक को ऐसा
0: वैष्णो सोज सुपर सोपर

0: संगत पावे।
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग।
1: मानते बिनसा सगला परम
0: पर पूजे सगल पार ब्रह्म।
1: साध संग पापा मल।

0: बस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहु जूत किता न पाया धर्म
0: नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर गए परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: दास को सब सोची परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जगत नानक राम दास
1: सबकी आज्ञा आत्म दावे
0: जीवन

0: कोट किरपन कठोर
1: कई कोट पे गातमने कोर
0: कई कोट बार दर्व को हिरे
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया शर्म माहे
1: कई कोट पर देश पर माहे
0: जित जित लाखो तित लगना।

0: कोट पवन पाणी बैसंतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट सस्यर सूर्य नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र से क्षत्र
0: सल समग्री अपने सूत तारे
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस जिस तारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण शिवर अर शास्त्र
0: कई कोट किए रत्न समुद्र

0: कई कोट पारम के दास कई कोट तत के बेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पैसा सभी जीवे
0: कई कोट नाम गुन गावे।

0: प्रभु होए पंडित करे बखियान
1: प्रभु मोह तारी लावे ध्यान
0: प्रभु तट तीर्थ स्नान
1: प्रभु सिर साधक मुख ज्ञान
0: प्रभु कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनक जोन पर में परमिया
0: अनक नाना रूप जो स्वागी दिखावा
1: जो प्रभावे तिवे नचावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न होए
0: प्रभु साथ संगत

0: के दुख शांत
1: शांत
2: संत के दुख
0: संत
2: संत शरण संत शरण जो जन पर
3: सो जाने वरना हारे
2: संत की निंदा नानका
3: बोल बोल रे तारे
2: संत के दुख ना

0: राज में राज जोग में जोगी
1: में तपीश्वर गृहस्थ में भोगी
0: जाई त्याई भक्त सुख पाया
1: नानक इस पुरखा के ने अंत न पाया
0: जाकी लीला की मित ना है
1: सगल देव हारे हो गए
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सगल परोई अपने सूत
0: मत

0: के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के समुद्रे सुन सरवन
0: हर कृपा जिसे अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जगत पाए
0: रूप सत जाका

0: काहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नान प्रवरख बड़ानी
0: बारंबार बार प्रभ जपिए
1: हम ते हम तक रपिए
0: नाम रतन जिन गुण मुख पाया।

0: पाई।
1: अनिक भगत बंदन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरे
1: सत बलिहारी सत गुरु अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु अपने
1: एहो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सोए।

0: जाने
1: सो क्यों बिसरे जन सब किछ दिया
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे
0: जन जन का टूटा गांडे
1: गुर पूरे तते हे बुझाया
0: नानक जन त्याया
1: साजन संत करो यो काम
0: त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर।

जो जाने ती सदा सुख होए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत धन धन धन जन आया जन आवन का हे सुआओ आप मुक्त मुक्त

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पुता माता की आशीष निमकन बिसर तुम को हर हर सदा भजो जगदीश सतगुरु तुमको हुए दयाल संत संग तेरी प्रीत कापड़ पद परमेश्वर राखे भोजन कीर्तन नीत सुकह टल गुरु सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बै

तिनलिया अंचला तिनलिया अंचल लाए। गुरु प्यारी साध संग जी बाणी दे कथन सार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन पुराने उठ सल से प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नू है। पंजा प्यारियां ने तुठना है, पंजा प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउणगे। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब का बनना है, गुरु साहब नू अपना बनाउणा है, आप तैयार वर तैयार होके रात नू रकाबगंज साहब शाम नू 4 बजे रकाबगंज साहिब जी तैयार वर तैयार होके पंजां ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुंच जाओ ते तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नू रैन सवाई हुई है रकाबगंज साहिब जी, आप जी सारे ने पहुंच के लाहे लैने।

मेरा तन मन ठंडा हो, आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा हो, त्राहे त्राहे कर शरणी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को।

भीन बुत बल खिने मोहे परदेश घूरते आई नाहन दर्ब न जोबन माती मोहे अनाथ की करो सुमाई खोजत खो।